0: अपविश्वासक भी रहस्य प्रकाश करम।
1: स्वामी भगवान से कुतु से कर, स्वामी भगवान से उतानु से कर, स्वामिनी भगवान से नवत वडिन से कर।
0: एहिन प्यानी उन्वान से गे मरण्यात उत्तान्यात सीपत कर्मिन जीवन दायक पूप्यात गैलवी मदायक कुशलाना तप्य बट पुद करम। ओ बहम वे सिटमिन ओबट सेवे खरानट अप सुदुसान वाचिन सल की मगेन अप्य बट तुति पुदमु। क्रिस्तुन महान से गे श्री सर रेता श्री रुधि रेता सहभागी बन अप सम शुद्धात्मन विशेन सत्कर्णु लबन लिस्स अपी अवनतवा आयद सिटिमु। स्वामिनी मुल्लु वे पेतर पवत्ना उबगे सुदो सभाव सीकल मैनव फ्रांसिस नमति अप शुद्धोत्तम प्यानंद मेलकम रंजित नमति अप अगराद गुरु तुमंद सकल पूजक पिरिसद समगेम सभाव दयागुणेन पिरिपुन वन्नट सलसुन मैनव उत्तानी बलापुरुत तैतुव मीगी अपगे सहोदर सहोदरियंद उबगे दयानुकम पावकरे विश्वासे तब मिनेश्वान कुत्स्यालंद सीकर उबगे श्रीवत मंडले आलोके वेतट उन खेंदवागत मैनव अप सियालंट दयानुकम पाकल मैनव भाग्यवत देमातावन कन्यमरियावंद भाग्यवत अपोस्तुल वरुंद एक एक कालयन युबगे कमत्ते टुकले सिलु शुद्धवंते इंद समग अपिदु सदा जीवनेट सहभागी वीमट सिदु संकल मैनव तवद उन्हा समग ओबट प्रशांत साकिरीमटद ओबगे महिमय वर्णा किरीमटद ओबगे पुत्र येशुस क्रिस्तुन वहन्से मगिन अपट वरम दुनु मैनव उन्वहन्से मगिन्द उन्वहन्से समगद उन्वहन्से केरेद सियलु बलते देवी पियानने शुद्धात्मन हा समगे क्वडवासन्ना ऊ ओब वहन्सेट सकल गौरवयात महिमय।

याज्ञाकरं सर्वबलधारी अनाति अनंत देवियनी मोक्षापन मातावन कन्यमरियतुमान्गे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहिकरनो तुमियगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुर वलिन हा अनवरत मरनेन गलवीम सलसो मेनव मेकी दे अपगे स्वामियो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपट लबेवा आमेन।